मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, ओहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद यह जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिसके विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नूं दित्ती है, मेहर कीती है पातशाह ने।

धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहेगुरु की उस्तुति करदे हां। हे वाहेगुरु, सब खंड ब्रह्मंड ए धरत आकाश कोट ब्रह्मंडा दे विच तू आप ही तो वस रहा, कोई दूसरा है ही नहीं। जिमी तू ही, जमां तू ही, मकी तू ही, मकां तू ही, अभू तू ही, अभै तू ही, अशू तू ही, अशै तू ही, जतस्त तू ही, बरतस्त तू ही, गस्त तू ही, मस्त तू ही। ते आप जदों फिर उस्तुति करन लगे अकाल पुरख वाहिगुरु दी, ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जुड़ गए उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है एदी विच कला है वाजे पंज शब्द घर सवागे शब्द वाजे कला जिन गिरधारिया उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया के विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो गुरु की कला देखिए राग सारण विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु की बख्शिश और समय का यह निचोड़ होगा शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे ता इहदा ज्यादा लाभ होगा।

ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚਿਆ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਜਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਵੇਗਾ ਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨਮਾਰ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਾਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੜੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
बड़े दिनों बाद अचानक फिर दीवान विच आ गए। वो जेड़े लोग उस दिन का पै उड़ीकते सन किस दिन हाथ आवे, उन्होंने वेखिया आपस विच इशारे किए अज आया। सुथरा जी ने मत्था टेकिया, उन्हें पिछों आके छोपले च बाहां फड़ लई, खलबली पै गई। साहब कहणगे क्यों भाई ऐसा क्यों कर दे कि महाराज जी नूं पुछो ये सानूं गालां कढ के गया। साहब कहण लगे माड़ी गल, सुथरा जी गालां कढ़ियां सन तुसां, कि महाराज कदों दी गल करदे कि महाराज इन्हूं पुछो गालां कढ के नहीं गया। महाराज केड़ियां गालां कदों दी गल करदे। महाराज हस पे, कहण लगे क्यों भाई तुहानूं पता है केड़ियां गालां किस दिन दी गल करदे, की गालां कढ़ियां सी कि महाराज संगत ते कहिंदियां शर्म आउंदी, बहुत गंदियां गालां कढ़ियां सन। महाराज इन्हां नूं पुछो किस दिन दी गल है, क्यों भाई किस दिन दी गल है। साहिबां ने भी परता के पुछया किस दिन दी गल है। एक दूजे नूं वेखण लग पए, कहण लगे महाराज दिन तां याद नहीं। कहण लगा महाराज चंगा इन्हां नूं यह पुछो भी उस दिन कीर्तन होया सी, की प्रकरण सी, किस प्रकरण ते कीर्तन हो रहा सी, मैं दसांगा किहड़ा दिन सी। यह सिर्फ यह दस दिन उस दिन कीर्तन किस मजमून ते हो रहा सी, कीर्तन च शब्द का भाव की सी। बड़ा सोचिया, कहने लगे जी ये तो याद नहीं। अच्छा महाराज इन्हां नूं पुछो भी उस दिन तुसां की किया सी, तुहाडे बचन तुसां भी तां विचार कथा बख्शिश कीती सी ना, इन्हां नूं पुछो भी उस दिन तुसां की बचन कीते सन, तुहाडे बचन दस दिन फिर मैं भी दस देंगा कि दिन की गल है। एक दूजे वल वेखिया सोचिया, कहने लगे जी ये भी याद नहीं आउंदा तुसां की बचन उस दिन कीते सन। बाहां उचियां कीतियां, झटका मार के उन्हां कोल खो के बाहां उचियां कीतियां। सुथरा जी कहन लगे, कहन लगे महाराज जी ये मेरे सिख ने तुहाडे कोई। उन्हां नूं होर गुस्सा चढ़ गया, कहन लगे महाराज देखो उस दिन तां गालां कढ़ियां, अज तुहाडे सामने देखो किड्डी वधीकी पै करदा। कहिंदा मेरे सिख ने, इस खलंडरे दे इस पतंदर दे असां सिख होणा, इह की पै कहिंदा असीं तुहाडे सिख हां। कहन लगा महाराज मैं दावे नाल कहिंदा साबित करांगा इह मेरे सिख ने, ना तुहाडी बाणी याद है इन्हां नूं, ना तुहाडे बचन याद ने, ना तुहाडी कथा याद है। मेरियां गालां तुहानूं दसण नूं तैयार ने सारियां, किहड़ियां किहड़ियां कढ़ियां सन, मेरियां गालां चेते कीतियां ने, तुहाडे बचन याद नहीं कीते। साहब मुस्कुरा पे, उन्हां नूं बड़ी शर्म आई, वाकई सुथरे दीआं गालां तां याद रख लईआं, गुरु के बचन याद ना रखे, क्योंकि चित गालां ते टिकिया होया, कच्चियां पिलियां गल्लां ते चित टिकिया होया, अजे बाणी ते चित टिकिया नहीं सी, शर्मिंदे हो। किसी प्रेमी ने उठ के शिकायत की, कहन लगे महाराज वेखो ना कुछ भी हो ठीक है, इन्हां लोकां दी गलती है, इन्हां ने गालां वल बहुता ध्यान कीता है, पर सुथरा जी नूं भी इंज नहीं चाहिदा, बहुत सिरे चढ़ा रखिया तुसीं, बहुत परेशान करदे ने, किसी किसी वेले तां बहुता ही तंग करदे ने। साहब कहन लगे देखो गल्लां सुथरा भी करदा, तुसीं भी करदे, असीं भी करदे, सिरजनहार दीआं गल्लां असीं करने आ, संसार दीआं गल्लां तुसीं करदे, पर सुथरा जी गल करदे ने ओ इस करके करदे ने कि झटका मार के जिवें किसे सुते नूं जगाउणा हुंदा है। जे तुहाडा बाणी वल ध्यान नहीं ते बाणी वल तुहाडा ध्यान दवाउण वास्ते सुथरा जी तुहानूं इक झटका दिंदे, इहनूं दुश्मनी ना समझो, इहनूं मित्रता समझो। जिस गल दे नाल तुहाडे मन नूं झटका लग के तुहाडा मन मोड़ा खा के गुरबाणी ते गुर बचना वल लगे, ओ सुथरे दी गल ते ओ हरकत जिहड़ी है माड़ी ना समझो, ओ तुहाडी मित्रता ही तुहाडे भले विच है। और कदे सोचिया होवे मेरा मन भी गुरबाणी वल जागिया कि नहीं, सिरजनहार दीआं गल्लां वल जागिया कि नहीं, इस भरपूर रस लैण वाले पासे मेरा मन तुरिया कि नहीं। साहिब पंचम पातशाह नूं पुछिया सिखां ने, कहण लगे महाराज देखो ना पंछी जागदे ने ते ओह बोलदे ने, पता लग जांदा अपने आप ही पंछी जाग पए, रोशनी हुंदी है पता लग जांदा कि सूरज चढ़ पिया। हर एक शय दा जागना अपने आप च इक ऐलान लैके आउंदा, हर शायद जागण विच एक ऐलान है, पता लगता है कि फलानी चीज जागी। ते महाराज मनुख कदों जागदा है, ध्यान देना, असी वैसे बिस्तरे चो जागने हो, जागना कुछ होर है, साडे अंदर धर्म दा जागना कुछ होर है। कहन लगे महाराज बंदे दा जागना की है, मनुख दा जागना की है। ते साहिबां ने बचन कीता सी, साहब कहन लगे जिस दिन गुरु की बाणी मनुख नूं मिठी लगन लग पवे ना, समझ लेना बंदा जाग पे। जो मृद लाग गए गुर की बाणी, मन जागण की यह है निशान। समझो मन जाग पे है जिस दिन गुरु नानक की बाणी मिठी लगन लग पे। भाई साहब भाई संतोख सिंह के बचना च महाराज कहन लगे सिखो जिस दिन तुहाडे मन नूं बाणी मिठी लगन लग पवे, समझ लेना उस दिन मन जाग पे।
जिदन रस आना शुरू हो जाए और रस आवेगा यह गल वखरी है कि इस पासे का रस जरा हौली हौली शुरू होता है। आप तुखारी के बारह माह च महाराज धन गुरु नानक पातशाह का एक बचन पढ़ने असुन आओ पेरा साधन चूर मोई प्यार दी बदी हुई विरहण जेड़ी है वह झुरदी है कि केड़े वेले आके मिलाप दियां घड़ियां प्राप्त हो पर ओ झुरदी जेड़ी उतावली जेड़ी दूसरे पासे गुरमुख बिरती वाली वह कहती है ता मिली है प्रभ मेला दूजे भाई सरकड़े खड़े हो जाएंगे तरह तरह के बूटे बेकार के पौधे खड़े हो जाएंगे। और इसे भाव की कसाखी भी दसते ने कहते ने किसी महात्मा के डेरे के आले दुआले थां पई सी चेले नूं कहन लगा देख बरसातां हो के हटियां ने इत्थे कुछ ऐसे बूटे ला दे इस थां नूं साफ करके जंगल विचों पनीरी अपने आप उठी हुई है कुछ अंबां दे कुछ रसदार फलां दे बूटे लिया के ला दे ताकि आने जाने वाले साधा की सेवा वास्ते तैनूं दूरों फल लैण ना जाना पए इत्थों ही फल लैके उन्हां दे पेश कर दिया करांगे ते अपना भी कम चलदा रहे। सत बचन तक कह दिता पर मनिया कोई ना बहुत लोग ऐसे होंगे ने सत बचन तक कह दें अमल नहीं करते सत बचन कह दिता कीता कुछ ना नतीजा होया बरसातों तो बाद उस धरती विचों बेकार दे बूटे उठने शुरू हो गए का बाथू सरकड़ा कई कुछ उठिया वो सारी धरती जड़ी सी ना बेकार दे बूटियां नाल भर गई। सर्दी आई लंघ गई और बूटे होर मजबूत होंदे चले गए गर्मी आई और सुक गए उन्होंने जड़ा चौलियां बरसातों च होर कुछ नवा नवा फुट पिया। महात्मा कह लगे काका तेनू कहा सी यह धरती साफ करके फलदार बूटे ला दे कह लगा जी बस थोड़ी जी ढिल हो गई ते फिर वेख्या सी खुला समा मंगते ने पटन पटान विच कह लगे हुण भी कर लै नहीं तो इन्हां दियां जड़ां होर गहरियां होंदियां जाणगियां तेरी मेहनत होर वधदी चली जाए। औखा सौखा होके लग पिया लग्या थां साफ कीती जंगल विचों पनीरी लियांदी लिया के ला दिती सर्दियां विच उस पनीरी की रखिया की गर्मियां दियां तत्तियां लोहां तों उन्हां नूं बचाया अगलियां बरसातां आ गईयां गोडी कर करके उन्हां दे आले दुआले होर कोई घाह बूट पैदा नहीं होण दित्ता उसने वह बूटे थोड़े थोड़े उठे ने कोई गोडे गोडे आ गया है कोई लख लख तक आ गया है कई अजे बहुत छोटे ने एक सर्दियां एक बहार एक गर्मी होर लंघ गई कुछ बूटे जो सन कुछ बूर ते आ गए किसी अजे कुछ भी नहीं लगा किसी किसी बूर आ गए बड़ा प्रसन्न होया कह लगा महात्मा जी बूटिया बूर आ गया हूं फल लगेगा कह लगे बूर झाड़ दे फिर क्यों कह लगे बूटे अजे बहुत छोटे ने इस फल च मिठास नहीं भरनी हुक्म मन के बूर झाड़ दिता एक वरा होर लग गया तीजे वरे जाके उन्हें बूटिया जो बहुतियां फल लगे फल बड़े मिठे आए फल लिया के महात्मा दे पेश किते कह लगे लो तुहाडी आग्या अनुसार मेरी कीती हुई मेहनत का फल थापड़ा दिता बड़े प्रसन्न हुए कह लगा महात्मा जी गल पुछनी दसो कह लगा वह जिहड़े घाह सरकड़ा ते बेकार दे बूटे सन वह तो महीने में ही बंदे बंदे जिडे हो गए सन यह तीन साल च मसा जाके फल देने जोगे हुए ने गल की उन्होंने बड़ी कीमती गल की कह लगे जिन्होंने रस देना होता है हौली हौली फल देने जिन्होंने कंधे देने होंगे ने दिन चुटकलाउंदे जिस रोटी ने अंदर जाके बीमार कर देना उस जबान ते बड़ा स्वाद दें जिस सिमरन ने जीवन सवार देना वह हौली हौली स्वाद देता रस हौली हौली आएगा पर जिस दिन आ जाएगा ना वो सामने बाकी रस आन रसा सब हो छेरे बेकार हो जाए वह दृढ़ता वाला पक्का सदीवी टिकन वाला रस है पर आएगा हौली हौली आएगा सिरजनहार दियां गल्लां विचों आएगा जिन्हां चिर बेकार दियां गल्लां विच सिर ते भार पैण वालियां गल्लां विच लगे रहांगे उन्हां चिर इस रस दा आपां जरा जिन्ना अंश मात्र भी चख नहीं सकते। साहब कहिंदे ने मैं अपने दिमाग ते गल्लां दा बोझ पा रहे उल्टी बेसवादी खड़ी कर ली मैं गुण गल्लां कह सिर भार गली गल्लां सिरजनहार जे गल्लां दा ही रस लैणा ते सिरजनहार दियां गल्लां च बड़ा रस खाना पीना हसना बाद जिहड़े निक्के निक्के स्वाद बने होए ना ए सारे बेकार ने जब लग हृदय ना आवे याद जे वाहगुरु चेते चली ना ए स्वाद बेस्वादी च बदल जाते हां तो परवाह के ही क्या की जाए जन्म जन्म किछ लीजी ली जाए जिन्हां ने इस जन्म का मकसद पूरा किया है भाव सिमरन किया है उन्हां नूं किसे दी कोई परवाह नहीं कोई लेखा पुछण वाला नहीं। हां जिहड़े टुटे हुए ने बेकार दियां गल्लां च बेकार दे रसां च पए ने
मन की मत, मन की मत पिछे लगे, मतागल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने, पता ही नहीं की कर रहे। जो कुछ बोली है सब खतो खता, जो गल करते ने गुनाह बन जाती। फिर क्या मुंह लै कीचे अरदास, पाप पुन दो साखी पास, जिंदगी च पुन्ना दी अणहोन ते पापा भी होन, ये अरदास करन जोगा मुंह भी तो नहीं रहन देते। की मुंह लैके अरदास करांगे प्रभु दे दर, बख्शे जान दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहे। क्या मुंह लै कीचे अरदास, पाप पुन दो साखी पास, बेवसी भी दसी है, जैसा तू करे तैसा को होए, तुद पिंड दूजा ना ही कोए, जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुद आपे पावे, तिवे चलावे, पर नाली प्रेरणा।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे न किसे न इस संसार की पीछे काल युग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी। ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ये कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ये शब्द गा के रसना पवित्र

सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा सबदान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सारा सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तिहाय सच।

हे जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इकना हुक्म समाए लै इकना हुक्म करे विनाश इकना बहाने कट लै इकना माया विच निवास एव भे आखना जापी जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है जंग को आप करे पर रास थोड़ी नानक जीव आए गए लिखना में तारन बहा लिया उथे सच्चे ही सच निपड़े चुनवा कड़े जे जुमालिया था उन्हें पायन कूड़िया मुह काले दोजक चालिया तेरे नायर सुन गए हार

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सदियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा पावे कार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार।

लख सुटी लगे ध्यान पढ़िया पाठ पुराण चिन करते करना किया लिखिया उन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहवे जिन सचो सच वरताया जिस

लोग पहला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिया पड़ पड़ भरिया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया है खात पड़िया जिद

अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्खन रह पत गवाई बिना ए कि खाए ना पाई रहे बेवाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी।

नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बैंड पिंडा तोय सूचे से नानका चित मन बसे सोए पौड़ी तुरे फलाने कौन वे।

आसर तीर से नाव है उतरे नाई मैल जिन पटन दरबार गुजरते बड़े संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाई किसे केरी बात सचे नाम दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे ताका है दीवाने को कलमे का हम तुम्हें दर ले लिखा पीर छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना पियो करा पे ही तय तारी है देख ही तय अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो है तो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण।

व्यास। जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां

बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन। ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है। ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी। ते पंडित जी ने कहा, बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा। जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया, बाबा जी आप दे गुरु कौन है? गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा, मैं अपना जन्म पृष्ठ नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाम बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नूं पुजे। रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है। अगो जवाब मिलिया पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकिया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहुंदे हो पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां। मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे आप ते मालक हो कर दे मालक हो आए हो ते गुरु नानक दे कर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे लकड़ा टों दे लंगर दे विच प्रशादे पकांदे संगता नू छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लेके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकदा है। जुलाहे ने भी किया कौन हो सकदा है ते जुलाही ने फिर कह दिता होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है। इतनी सेवा करन वाला करड़ी सेवा करन वाला जिसनू निथावा किया है उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा। बस भगती परवान होई सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तखत ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे मान हो निताणियां दे तान हो न्योटियां दी ओट निगत्तियां दी गत पत्तियां दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर भई कवित दे विच कलम बद कीता इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवका नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंगद साहिब वर्गा ते फिर कोई सेवक

कल्याण दास जी ने 20 रुपये दिते सन के बच्चे कोई खरा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। 20 रुपये लेके चल पे, जाना ते सी चूड़ काने, मगर रस्ते दे विच ही एक साधु ते संतां दी मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरां तों अनेकां दिनां तों परमेश्वर दी आस विच बैठे सन, भुखे प्यासे के परमात्मा दर्शन देवेगा, ते जे परमात्मा साडे लई कोई भोजन दा उपराला करेगा ते तां ही छकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी निगाह पै गई। बालपन विच ही बाबा नानक संतां दी मंडली विच जा बैठे, सिमरन ते बैठ गए, भजन सिमरन कीता, देखिया बई ए ते जेड़े साधु हन कईयां दिनां तों भुखे ते प्यासे हन। जेड़े 20 रुपये सन ओ जा करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नूं भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नूं तृप्त कीता।

प्यार नाल, प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते पाई साहब पाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर कंचन

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा भी।

जे तरना भवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जदू मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा।

सच वंडन वाला, सच दा प्रचार करन वाला, नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, चढ़िया सोधन धरत लुकाई, भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक। कहन लगे मरदाने आ चल, तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा है, लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना, मैं सच्चे नू रिझा लवांगा, ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावा। तो लंबे दी धरती नू तार दे तार दे।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चलदे बनने, पर भोजन ता कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करदे ने, जथा शक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही एदा चलदा। सतगुरु कहन लगे भाई फिर ता तैनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा कदे बाबे वल वेंदा।

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए बाबा जी, खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे तो छकांगे, हुण असी चलने, पर जे तू चोरी ना करें तो चंगा, ये माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं, एक होर मैं सच बोलदा पर चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा। सतगुरु कहन लगे दो बचन होर साडे चेते रखे,

एक दिन मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है, शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले किथे जा रहे हैं? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, फिर सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है? कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन है? मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां, ए राजे दा कोई खास निकट वर्ती होना, ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए, जा भाई नंग जा। जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन ली। बंदे दा मन बड़ा लालची, होर वेंदा पर कुछ होर मिल जाए, हनेरा सी, हाथ मार दे मार दे, टोंदे टोंदे, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते ओ जबान नाल लाया ते ओदे विच लून सी, बाबे दा बचन चेते आ गया पी लून खा के हराम नहीं करना। भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है,

हैरान हो गया भी हैं ये की होया कोई चोर आया सब कुछ इकट्ठा करके उसे तरह पंड बन के छड़ गया गल की सवेरे इलाके दे सारे बदमाश कट्ठे कर ले ते लगी मार पैन हुणे सोचदा एदा नां इतिहास ने भूमिया करके लिखे भूमिया सरदार जमीन भी बड़ी सी बाबे दा बदन चेते आ गया पे गरीब मार नहीं करनी ते सोचदा गरीब मार ते हो रही है भूमिया करे तू ते परे कोई होर जाके पेश हो गया पे राजन ए सारे नु छड़ दे मैं तेरा चोर भूमिया सरदार तू एक भी हो सकता है नहीं राजन मैं ही तेरा चोर हाँ कदे चोर भी को कहंदा मैं चोर हाँ ये गल की है सारा कुछ सुनाया भाई मैनू मेरा मालिक मिले है आप नारायण कला तार जग में परवरियो संसार नू छेद देन वाला गरीबां ते रहमत दी छां करन वाला आप चल के आया मेरे घर ते मैनू सिखिया दे के गया सच बोली लून खा के आराम ना करी राजा मैं तेरा लून खा लिया ते गरीब मार ना करी बड़ा समझदार सी कहन लगा मैं इनू सजा की देनी है सजा देन वाला तेन सजा दे गया भूमिया सरदार मैनू भी मिला ओनू मैं भी ओदे दर्शन करके अपना जन्म सवार लवा वो किथे मिलनगे भूमिया कहन लगा ओनू याद कर प्यार नाल ओ आपे आवेगा जिवें मेरा बेड़ा तारिया जिवें मेरे गरीब ते नजरे अनायत कीती है तेरे ते भी करेगा फिर मैं की करा तू प्यार नाल जप ते प्यार नाल एक

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लैन के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहरा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहू महादान होय के मांगो धन देत हो, कहू

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का चालू होया।

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी, जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, ओदे पेट विच दो

सफाई सी। उच्चता से इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।